0: موديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
4: अमिल्ला फैसा आंदा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु गे इस्तेमाल कुरुम गे साबुं दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफास हिसाब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: नुवदी एके मेगाहर्ट्स दिवे एफएम अबदुएस एम मेगा आतुगा।

0: ऐसा लिखे?
1: अच्छा लिखे हो।
2: लव स्टोरी बहुत प्यारा है सर।
3: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए
1: बॉलीवुड के इतर फिल्म का हफ्ता बंद का रिलीज हुआ। हम जे फवाइतर फिल्म का मेबर ने कृष्णा और चिट्टी मीवे सम वर गिना दोस्त का कफो बेलून तिरिंगे मेदुगा वर मकबूल वेगे इंडिया फंडाणे गे फिल्म में फिल्म की दर्शिल सफारी ए बोनी हम वर गिना फरात तक इंगे ने तारे जमीन पर गे एक्टर मी एक्टर के विनय भारद्वाज डायरेक्ट को फवा फिल्म में स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में फिल्म की रवीना ठाकुर आदि विनय भारद्वाज मी फिल्म प्रोड्यूस को फमी वनी शाइनिंग सन स्टूडियोज के दर्शो अरुण गोविल आदि दर्शी लेकुक मी लीड रोल फेनिगेंदा इरु फिल्म का फेनिगेंदनी क्रिकेट आदि आयली एक गुड़ुन तक दें एक मुगे सबु हम दिमावा बे खंते तक नवावेस मेगा रिलीज हम हम जे फवनी मी फिल्म
4: तीन बॉल में 12 रन तो बनने से रहे
5: बैट्समैन कौन है पता है ना जूनियर सचिन
6: सचिन मेरे लिए गॉड ऑफ क्रिकेट है जो मेरे दिल में रहते हैं वैसे ही कृष्ण बाबा की गॉड है
1: हफ्ता बंद का रिलीज महमजेफा दिंग इन फिल्म बलालारो जीना दिल से मे हिंदी लैंग्वेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है आदिश राणा डायरेक्ट कुरा मे फिल्म का रूम शर्मा लक्ष्य हंदा यश पुरोहित अभिषेक सिंह राजपूत श्रद्धा जोशी लीड रोल फेनिंगे मिदानी मी फिल्म की हम मिहार बलालाफ कम वाणम कॉमेडी फिल्म तो गए लिस्ट कम वर गिन बैक इंतजार कर मुंदा फिल्म मी बलाल मी हफ्ता बंद का रिलीज महमजेफा बॉलीवुड फिल्म तक हॉलीवुड के बाय फिल्म तक

बालाणकोमिस वरकम हुरिया फिल्म तक बालाणु लवणकम गवी नमस मियार की हॉलीवुड के फिल्म तक बाला लाइफ को मवाण में समवर गिन बाय को इंतजार करो मुंदावर मी बोड़ते बजट तो के फिल्म तक गाओ महम जेफवा आहारे एको तुम हफ्ता के हफ्ता बंद में आशाविस नवावी हवे समवर हिगे मसे के तक रिलीज हुमा हम जे फमी वने एको तुम एम में फुरत में मी बाला लनी नवावी सोने दो हो रिलीज हुमा हम जे फा फिल्म तक नवावी आदि तीरी से के गमी हफ्ता बंद हफ्ता बंद आए को मी आदित्य दो हुए से रिलीज है फिल्म नी हॉलीवुड फिल्म है एगो तुम बैकरूम्स मी फिल्म रिलीज हुआ हम जे फमी बनी कैन पासन्स डायरेक्ट को फॉर्मी फिल्म का रिनेट रिन स्वे मार्क डुप्लस फिन बेनेट आदि शिवेटल एजोफो वेस हम लीड हूँ फिनिगे ए बदे एवं जोगी आवेस मी फिल्म फिनिगे दायरो मी हार देंगे एवं न कि हम हमारे गिने बे के तारु ये बुले बुमुंग एक्टर है मी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है बैकरूम की नी अने थेरेपिस्ट एने के पेशेंट होदंग एहन डायमेंशन का मी दातुर में कोरानी देंग एक हाल गोत का दका साइंटिफिक हॉरर फिल्म है मी फिल्म की द ब्रेडविनर इज रिलीज हो महा मुझे फमी वनी नावाविस मेगा द ब्रेडविनर मी फिल्म की एरिक एप्पल डायरेक्ट को स्क्रीन प्ले लिए फवा फिल्म है नेट बाग से डेन लजानिया स्क्रीन प्ले लिए फवायर नेट बाग से आदि मेंडी मो कॉलिन जोश जेच चेरी मी फिल्म फेनिगेंगे बदे द ब्रेडविनर मी कॉमेडी फिल्म है फिल्म का मैगन को तेका फेननी शार्क टैंक मी आम को बेर को मैं फेना शार्क टैंक या शोइंग इन नानी अगो सब बिजनेस आइडिया हो शाला हिसाब हम हो ला रहे देनी बिजनेस फाशम एको ता शार्क टैंक गो सर नेट किया मी है का मी नेट के अंगनो ना डील ले मिली बेनी देंगे ए हिसाब हूँ ना गे का माडू में कोरे ने नांगे नो वाजीफा है गोसे खागो तक फिर इंदा कॉमेडी फिल्म में मी फिल्म की हफ्ता बंद का रिलीज हुआ मुझे फवा इतर फिल्म का बाला रो पावर बेलेड मी फिल्म में रिलीज हुआ आज भी फिल्म नहीं मी म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा है जॉन कार्नी डायरेक्ट को कोर लिए फवायर पॉल रड निक जोनस हवाना रोस लू आदि जैक रेनो मी फिल्म फेनिगेंगे बदे रिक पावर गे रोल पोल रेड फेनिगेंदार एने की वेडिंग सिंगर इंगेने मी फेननी कुरी गे बॉय बैंड सिंगर डेनी विल्सन इट मी कैविन जको मी फेननी एड्रे को फेनिगेंग एदे मी हुं एकुगा देन मी लवकियम जेम कोरम मी एक्वेर कंग आलावेगे मेदनी एनमेस मी जेम सेशन गे तेरे डेनी गे रोल में कुले नी निक निक जोनस गे कैरेक्टर रिक के लावे वागा में नगे नगाफा ए लावा किया है गे हम ए लावा मिवानी दुनिये गे मकबूल कर लिपिगे ना हम नंबर वन हिट कम मिवानी ऐसा बोल डेनी अनेक कावे सम मी मशहूर कंग एने लिपिगे ना आयर रिक का देंगे एने गे लावा वागा ने घुमाए हो रिहा कम को रुड़िया इसके रिवेंज नगम बदल ही फंगे उड़े उड़ू मी फिल्म का दक्कुआ देनी प्रेशर इस मी हफ्ता बंद का रिलीज हुआ हम जे फवा एरो प्रोपेलर वन वे नाइट कोच विस मी हफ्ता बंद का रिलीज हुआ हम जे फवा HBO या ए बाद मिस यू लव यू मी हम अरे गिन भाई को इंतजार करा फिल्म है मी फिल्म के एपल टीवी या प्रोपेलर वन वे नाइट कोच मी आने एम मी हफ्ता बंद का मी हॉलीवुड रिलीज हुआ हम जे फवा फिल्म तक मी बला उम्मीद में करे मी बैक हम दिया कम दे स्पीड डेमन मी आदित्य दुआ हॉलीवुड का रिलीज हुआ हम जे फवा फिल्म है स्पीड डेमन मी फिल्म की सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है कैटी कैसिडी आदि विलियम एच मेसी मी फिल्म लीड हूँ फिर मी दानी एम मी हफ्ता बंद का रिलीज हुआ हम जे फवा फिल्म तक कैन कैसे लावे कफा बदल को लाना

0: नोदी के मेगाहर्ट्ज टीवी एफएम मेगाडीगळ में कोरिया गेंदा ईद तहणिया लाइव में शोग अणिक सीतुर बैवरे का गुड़ा लेवे तो बस के में कोरानी शोगे तेरे लावत का रिक्वेस्ट कॉलम के फुर्सत लिबेन मूस के रिक्वेस्ट में मैसेज कियाल दे न कियाल दे बैवरिया या वाह का दक्का लाफ लाव जहा लतीफ मूस के रिक्वेस्ट जहा लतीफ शो दे बद कोलानी ईद मुबारक टू ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लीज प्ले उफलुम फोले ने ईद ओमो टू ऑल फैमिली कूडा कूडा एंड मोम वर हास को नाजी
1: अब्बा
0: ईद मुबारक की ने हाल हुआ
1: बराबर
0: बराबर कौन कमे गति उड़े नहीं बिगड़ेगा ರಶುಗತ ತಿಳಿ ನೀ ಫುರ್ತಮ ರಶುಗತಿಳಿನಿ ಅದ ಮಾಯೂಸ್ ಎಫೆ ಕಮ ಕೊತ್ತೀರಿ ಮಾಯೂಸ್ ಕುಂಕಾಲ ಕುಳಿವರ್ತ ಕೆಮ್ಮೆ ದೋತಿ ಕ್ಯಾದಿ ಮಮ್ಮಿಯದುಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್
1: ಮಂಡ್ಯ ಬೊಂಡಿಯ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಲಿ ಪೆರೇಡ್
0: ಹಾವೀರ ತಮ್ಮ ಮಾಲಿ ನೆರೆ ನಿಂತಿಕೊಳ್ಳು

0: వర వర ఫోరిగా తిరుగుతాయ్యారు ఇంక కాదా కొద్దా ఓకే ఏమేమో ఫస్ట్ ఆడమే రాజేగే ఫిరిహెంగ్ ఎక్టరుంగేన అంత
1: ఇష్పాన్
2: రవి
1: యూపే
2: నిమల్
1: సీజన్
2: అడే
3: షరఫ్
1: షారిఫ్
2: అమన్
1: రవి
0: రవి కియాఫ్ ఎక్కడో
1: ఓ మసేన్ ఎహెం వెజ్జి యా నిమాల్
0: నిమాల్ ఇస్ కియాఫ్ నిమాల్ కియాఫ్
3: నిమాల్ మొహమ్మద్ త నిమాల్ హుసేన్ త
1: యార్ కీనంత కియావ
0: కీనంత షహు వంగే మికొల మికొల గబరే మికొల గబరే మికొల గబరే వాగు తో అమ్మవణి
1: దేంగో హేవే వరుమ కొన్న
2: నిమాల్
0: kiya kiya kiya
1: ispan
0: ispan amileki
2: me bhai kurta so
1: ispan
2: ye shada
1: bhai
2: me gaavit kudin gaava gaavit
1: yudige
2: bodhe bakru gaavche
1: gaaviye de
0: saido maniku maniku jimi
3: fitte
0: engane ama shamir
2: juma itge emme
0: ede
2: juma
0: em swan masre ne kam ko mi up up jawab de a jawab ma 16 point
2: de umra gale de hai em hai
0: kita ke kiya ti ole ni
2: 3 plus 3 is equal to 6 em
3: hai de dengan na fase so wa
2: vidyapur ke 35 bifaru
1: hai
0: da dai yaar da ತಯಾರು ವೆಚ್ಚ ದೆಂಗಿನ ಸುವಾಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಂದಿದಿ ರಾಜೇಗೆ ಅಂಗೇನ್ ಲವಕಿ ಉಂತೇರಿ
2: ಅಶ್ಫಾ
0: ಕುರಿಯ ಕುರಿಯ
2: ಮೀ ಕಾಕುತ ಮೀ
0: ಬೊಡುಬೇರ ಜಹಾ ಕುದಿಂಗ್ಯಾರಿ ಮೀನು ಸುವಾರ ರಾಜೇಗೆ ಫಿರಿಯನ್ ಲವ ಕ್ಯೂನ್ ತೆರಿ ಮಗು ಫೆಶಿ ಬಡಬೇರು ಗ್ರೂಪ್
3: ಮಂಡೆ
0: ಬಡಬೇರು ಮಸ್ತ ದೆಣ್ಣೆ ಕುರಿಯಾ
3: ಕುರಿಯಾ ಹಮ ಮೊಳಿಯ ಜವಾಬ್ ದೇಣ
2: ಹೊಕ್ಕೋ ಕುರಿಯಾಡ್ಬರ್
0: ಎದಿನಿ ಹಿಂಟೆ ಮಾಡುವಾಲ ಫಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಮ್ಮ ವೆಚ್ಚೆ ರಾಗ ಕಿಯಾಲ್ದೇಮಿಂಗೆ ಹಮ ಫಾರಕು ಲವೆ ಯಾರ ಹಿಮೇನೆ ಲವತ
2: ಯಾರ ಬೇಣುಂ ಭೀಮಾ ಏಕೆ
0: ಕುರಿಯಾ
2: ಕಮೋನ್ ಯಾರ ಯಾರ यार अगला बता क्या
3: यार यार यार यार दीपला
2: यार आगे मोनु मधुशी में
0: कुरिया
3: यार फिनिफा हिद्दीवाना वेज
2: यार आहाशे आशिक यार वो सो क्या था
0: यार वो सो क्या ती इंटू देनी था
2: कमोन यार यार यार बम्बे लगे क्या यार जाएगे दो भी क्या था यार यार यार
3: बम्बे लगे बस किया
2: यार ओके यार वो सो क्या
0: भागोतो
2: नेते थी कब भाग
0: हाँ मावड़ी
2: यार यार नेते थी कब भाग मैं कब यार यार यार दूर कर दिए ओके नहीं नहीं नहीं मेरे तो कुछ नहीं कमा
0: बागू तो हमारे
2: यार तीन ये लोग तो शिफ्ट ए वाह क्या बोले यारू
0: बागू तो हमारे को बा तो यार दें मैं दोनों दी टीम एनी मोनी बाकुरु टीम ताई यार तो वारे ही मैंने लवता
3: वारे के परे के नी पेंडी ये हुरी
0: कुरिया
3: कुड़े रुकिया लवे हादान को
2: इम्यान वारे अबोटो वारे वहम पेशी है वह वारे तेरे
0: अतरे
2: On the rain. Rain के बारे
3: No no no no.
2: उसको तो क्या
3: No no no no. वारे के परी
0: No no.
3: Fit ने ना बदौरी repeat अंदर बदो.
2: हे वारे तेरे
3: अरे
0: क्या फिर मुंह
2: दिम में की हम
3: हमारे के परी हे वारे
0: आमिर ने किया फा
2: इम्यान वारे ओ बोटो इसके
1: अरे नहीं गे जाओ
0: हाथे हम कोला आ वागु तो हम
2: भी विस्तारे
3: ए वारे
0: ಮೊಳವಾಕಣ್ಣು ದೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬುರುಗ ಹತ್ತರೆ ಹತ್ತರೆ ಜುಮ್ಲ ರೌಂಡ್ ನತೀಜ ಬದಲ ಇರು ಅಣ್ಣ ತಿರಿ ಸಾಶೆ ಮೀ ಬಕುರು ಟೀಮ ಸೌ ಇಸ್ತಿಕೊಳ
1: ಮಣಕಾಸಿಂಗ್
0: ಲವೆಂಗ್ ಅಡು ಅಲ್ಲ ಫಣ್ಣಮ್ಮ ಅದು